0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
4: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252578 6।
5: जी हा, 2131525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।
6: शान रिसालत मौला जाने बेखे ताकत ना गे, खालिक जो महबूब मोहम्मद।

इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जदे पढ़ू था दरूद सजन से पान दरूद बुधन था, यानी जब भी हम सरकार पे दरूद भेजते हैं वो हमारा दरूद समाप्त फरमाते हैं। ये हमारा अकीदा है। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। समाप्त करो।

अंदाजा लगाए, इलाके वालों को पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बाबा से बुलंद, मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बाबा से बुलंद हैदर।

आशिक बैठे हैं तो अभी उतनी आवाज नहीं आई। महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो जानता किधर है, सारे ही महफिल वाले हाँ, ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाए, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समा फरमाए बाबाजे बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मौलाली के नारे का जवाब देना है। बाबाजे बुलंद हैदर वरगा सकीन कोई।

0: बस बस खत्म। जो बाहर खड़े हैं वो भी बोल दे
1: हो नारे हैदरी।
2: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
3: मोर को दिल्ली राणा मोर को दिल्ली
2: आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

साईं मुंहिंजा ॻाल्हि कंदासीं दोस्त जी त दोस्त दोस्त हूंदो आहे जीअं गुलनि जो बादशाह गुलाब जे गुल खे चयो वञे थो ऐं तीअं जिन में घोट जी बि ख़ासि अहमियत हूंदी आहे। बिल्कुलु ईअं ई हिकु दोस्त पंहिंजे दोस्तीअ जे दायरे में अहमियत रखे थो। जेकॾहिं असां बि पंहिंजी दोस्तीअ जे हल्के में पाण खे अहिड़ी अहमियत ॾियण जी ख़्वाहिश रखूं था त असांजी ॿिया दोस्त इज़त कनि त असांखे बि पंहिंजे दोस्त खे सचे दिलि सां मोहबत ॾियण खपे, इज़त ॾियण खपे ऐं पंहिंजे सचे जज़्बे सां ईमानदारीअ सां असां उन खे बि अहमियत ॾियूं। ईअं न आहे त असां पाण इज़त जा क़ाइल रहूं, असांखे इज़त मिले, मोहबत मिले ऐं पाण वरी पंहिंजे दोस्तनि खे पाण नज़रअंदाज़ करे छॾियूं, पोइ नटाइण बि लॻूं, लवाइण बि ऐं उन जा अहिड़ा ठाह ठाहियूं ऐं चवंदा आहिनि त दिलि खोटी त उज़ुर घणा। अहिड़ो अमल सचे दोस्त वारो अमल नाहे। अफ़सोस सां चवणो पवे थो त असां अॼुकल्ह दोस्तीअ खे घटि पर पंहिंजे मुफ़ादनि खे वधीक अहमियत ॾियूं था, जंहिंमें कंहिं बि क़िस्म जो कॾहिं बि कमु पवे थो त जल्द ऐं मुफ़्त में कयूं था, पर अहिड़े माण्हू सां दोस्ती रखण में देरि कोन था कयूं। अहिड़े माण्हूअ जे रुसी वञण ते बि पंहिंजो आराम फिटी वेंदो आहे, जंहिंमें असांजो कमु हूंदो आहे, मक़सदु हूंदो आहे, मुफ़ाद हूंदो आहे। पर जेकॾहिं असांजो दोस्त अहिड़ो पिरी प्यारो कावड़जी वेंदो आहे, रुसी वेंदो आहे, त पाण उन खे वरी परचाईंदा आहियूं त असांजो शल उन में कमु आहे ऐं शल देर न थिए। पर दोस्त जॾहिं परचण वारो न हूंदो आहे त उहो अहिड़ी ॻाल्हि कंदो आहे त तव्हां दोस्तीअ में परचण में देर कई ऐं असां वरी जेको आहे सो दोस्ती कंहिं ॿिए सां रखी आहे ऐं असां दिलि खपाए छॾी आहे पर बयान बि असां वठी छॾियो आहे।

0: अमेरिका एक भेरो ॿीहर ईरान ते फिज़ाई हमला शुरू करे छॾिया। टे ॾींहं बि लगातार बमबारीअ जो सिलसिलो जारी। ईरान जा शहर कोनार्क, जोदादक, बोशहर ऐं बंदर अब्बास धमाकनि सां गूंजी उथिया। परॾेही ख़बरू इदारे मूजिबि बोशहर ऐं जोदाक में 6 धमाका थिया। बंदर अब्बास में बि ज़ोरदार धमाका ॿुधा विया।
1: अमरीकी हमलनि बाद ईरान जा अमरीकी अॾनि ते जवाबी हमला। ईरानी मीडिया जो चवणु आहे त कतर, बहरीन, कुवैत में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो आहे।
0: मुल्क में थींदड़ दहशतगर्दीअ में ओभर वारो पाड़ेसरी मुल्क मुलविस आहे। दहशतगर्दी में अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल थी रही आहे। सभई गॾिजी फितने खे ख़त्म कंदासीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कोयटा में नेशनल एक्शन प्लान जे सूबाई एपेक्स कमेटीअ जे इजलास खे ख़िताब। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, बलूचिस्तान जे गवर्नर ऐं वॾे वज़ीर समेत ॿियनि इख़्तियारनि जी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खे बलूचिस्तान

0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
2: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
2: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
1: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलाण लाए
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252576।
2: जी हाँ 2315525786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

إلي مشهد الرضا. هم يظهران ناشطان

जी समय ने प्रोग्राम रोशन सुबह में वापस अच्छी चुक आये मुझे मेजबान ने मतलब जुड़े जो समझा अखियों जेकी कुछ दिसन थियों तन के कबूल कन थियों या रद्द जहन कंदो आहे असां जी पूरी हयाती में के शयूं अहिड़ियूं बि साम्हूं ईंदियूं आहिनि जिन खे कल पसंदि कयो वियो या सुहिणियूं लॻंदियूं हुयूं से अॼु नथियूं वणनि ऐं कल जेके शयूं असां खे सुहिणियूं न पई लॻियूं से अॼु ख़ूबसूरत छो पई लॻनि इन सवाल जो जवाब ही थी सघे थो त ॾिसण वक़्तु ज़हन जी कैफ़त कहिड़े क़िस्म जी आहे हूअं बि कंहिं ॾाहे जो चवणु आहे त ख़ूबसूरती इंसान जे अंदर में मौजूदु हूंदी आहे उन में को बि शक नाहे छो त जॾहिं इंसान जे ज़हन में ख़्याल सुठा हूंदा त संसार बि सुठो लॻंदो आहे हिन संसार में अहिड़ा माण्हू बि आहिनि जेकी हर शइ में सूंहं खे ॾिसंदा आहिनि ऐं कख हुजे पन हुजे हर हिक में सूंहं जो जलवो ॾिसनि था जॾहिं हर शइ में सूंहं जी समझ अची वञे थी त पोइ दिल बि हरदम खु़शि रहंदी आहे पोइ चेहरो भले मासूम छो न हुजे त उन खे चवंदा आहिनि त ॾिसण जूं अखियूं पंहिंजियूं आहिनि ऐं चवंदा आहिनि त सिक बि हुजे ऐं सॼण न मिले इहा सॼी ॻाल्हि आहे अखियुनि जी।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो?
4: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: इट्स टाइम टू जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के जी बुधंदा रहो डॉक्टर ये नेटवर्क ते
1: वजूद तहे जी दुनिया में तहे जी जिंदगी बदल जी वेंदी आहे बस पोए इश्क जा वला अंदर में मच मचाए छरींदा आहिनि इश्क त उहो रस्तो आहे जंहिं ते हलंदे सवाइ ॾुखनि जे ॿियो कुझु बि नाहे मिलंदो पर बावजूद उन्हनि सभिनी कैफ़ियतनि जे ऐं मंज़रनि इश्क जो नतीजो ॾाढो वणंदड़ थींदो आहे अंदर में इश्क जॾहिं पची रास थींदो आहे तॾहिं समूरो इंसान हिकु अखि बणजी पवंदो आहे ऐं समूरी दुनिया हुन जी

ईरान जो शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी जो मस्जिद में मिट्टी माओ हवाले शहीद अली खमेनी के हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में मिट्टी माओ हवाले किया वो जनाज़े नमाज़ में सपोर्ट आयतुल्लाह खमेनी पढ़ाई शहीद की तदफीन में हज़ारे मानू शरीक थिया। ईरान जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबाई खमेनी शहीद आयतुल्लाह खमेनी की ताज़ियती मिड़ाके में शिरकत कंदो। ताज़ियती मिड़ाको मगरिब ऐं इशा जी नमाज़ बाद थींदो।

0: अमेरिका ईरान जे हिक ॿिए ते हमलनि बाद पाकिस्तान समेत ॿियनि सालसनि मुल्कनि समेत सिफारती कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सिस मूजिबि पाकिस्तान ऐं कतर समेत साल्स मुल्क अमेरिका ईरान सिक्तान घटाइण ऐं एटमी प्रोग्राम ते ॻाल्हियुनि जी बहालीअ लाइ कोशिशूं करे रहिया आहिनि। ॿिन्ही मुल्कनि जे नुमाइंदनि अमेरिकी ऐं ईरानी इख़्तियारनि सां बि ॻाल्हायो आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प बि ईरान सां मुकमिल जंग जो हामी न आहे।
1: अमेरिका जे टे ॾींहं बाद ईरान ते बमबारी। ईरानी शहर कोणार्क चोगादक बोशर बंदर अब्बास ते मिज़ाइल हमला। ईरान जा ॿ अमरीकी अॾनि ते जवाबी हमला। ईरानी मीडिया चवण आहे त कतर, बहरीन ऐं कुवैत में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो।

टेको हाट में पुलिस जो कानून लागू कंदड़ इदारन सां गड ऑपरेशन चार दहशतगर्द मारजी वया। पुलिस मूजिब गुझी इतला ते गडियल ऑपरेशन कयो वयो। ऑपरेशन जे नतीजे में मारजी वयल दहशतगर्द केतरन ही पुलिस ऑफिसरन जी शहादत में मुलविस हुआ। वधीक जांच जारी आहे।

0: लक्ष्मी गुलाम साहब जो सखर और टांग जातल शख्स जो लाश हथ अस्पताल मुंतकल सखर शिकारपुर तां मंगी फ्लोर बिल लगन जातल शख्स जो लाश मिलो इतला ते लक्ष्मी गुलाम साहब पुलिस वाके पर अंदर पहुंची लाश अस्पताल मुंतकल कयो पुलिस बताया वा त लाश आईस जी मवाली जो लगे पियो वधिक जांच करूं पिया।
1: कंबर वेझो ऑटो के दुकान के बाह लखे रुपये जो सामान सड़ी वो भुट्टो चौक ते कायम फिदा हुसैन लाखों के दुकान के बाह लगी वही समूरो सामान खाक दुकानदार जो चवण है त दुकान में पयल 12 लख रुपया रोक ए लखे रुपये जो सामान पिणी सड़ी वो है नोटिस वी वहार कई वे।
2: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: आप सुन रहे हैं GAFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
4: सुनते रहो GAFM 90.4।
6: छा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
7: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
7: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा

0: हिन नंबर ते राबतो कंदा।
1: 0331252578 6।
0: जी हाँ, बुड़ी 331 5 5 786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM
3: 90.4। पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: आई। हाँ, गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाण लाए
4: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: के शहीद की तस्वीर में हजारे मानू शरीक थे। ईरान जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई शहीद आयतुल्लाह खमनाई की ताजियती मिड़ाके में शिरकत कंदो। ताजियती मिड़ाको मगरब ए ईशा जी नमाज बाद थींदो।
1: अमेरिका ईरान के एक बे ते हमलन बाद पाकिस्तान समेत बेन साल्स मुल्क सिफारती कोशिशों तेज कर छ्यू। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एग्जिस मौजूद पाकिस्तान ए कतर समेत साल्स मुल्क अमेरिका ईरान छिकताण घटाण एटमी प्रोग्राम ते गाल बहाली लाय कोशिशों कर रहा है। बिन्हीं मुल्क के नुमाइंदन अमेरिकी ए ईरानी इख्तियार भी गाल है। अमेरिकी सदर डोनल्ड ट्रंप भी ईरान से मुकम्मिल जंग जो हामी न है।
0: अमेरिका की टे डीह पर ईरान की बमबारी। ईरानी शहर कोनार्क चौकादर्क बोसर बंदर अब्बास से मिजाइल हमला। ईरान जब अमरीकी अड्डन से जवाबी हमला। ईरानी मीडिया चवाया तो कतर बहरीन ए कुवैत में अमरीकी अड्डन के निशानो बनाया वो है।
1: ईरान से टेक्निकल सतह जो गाल जारी हैं। मसले के सिफारती हल लाए पुरजम आयु अमेरिकी अमलदार के दावा। अमेरिकी परडेही मीडिया मौजूद तेहरान ए वाशिंगटन में टेक्निकल सतह जो गाल जारी हैं। अमेरिका जो मौकफ वाजे है ईरान एटमी हथियार न रख।
0: केपी के इलाके कोहाट में पुलिस जो कानून लाकुतल इदार ऑपरेशन चार दहशतगर्द मारजी वा। पुलिस मूजब कुछ इतलात ऑपरेशन कर वो ऑपरेशन के नतीजे में मारजी वाल दहशतगर्द केतन पुलिस ऑफिसर की शहादत में मुलस हुआ। जांच जारी है।
1: कंडियारो भरसा हथियारबंदन की फायरिंग में जख्मी थियल व्यापारी नवाब शाह अस्पताल में दम धड़ी हवाले कर छो। मंगरिया शाख वट गोलियों लगने सबब जख्मी थियल व्यापारी नसीर कलोड़ो हयाती विञाए वेठो। लखी गुलाम शाह वेझो सखर रोड तां जातल शख्स जो लाश हथ अस्पताल मुंतकिल। पुलिस चयो आहे त लाश आइस जे मवाली जो लगी रहियो आहे।
0: दुल में प्रिया कुमारी समेत अखवाचल बालन की बाजियाबी लाइ जस्कम की रैली। जस्कम काकुड़न नमरोटी चौक का प्रेस क्लब तीन एहतजाज रैली कढ़ी। अगवाणन जो अखवाचल बालन की बाजियाब न थियण हुकूमत की नाकामी है। प्रिया कुमारी ए फजीला सरकी के वारसन की रड़ियों भी बुधण लाइ तैयार न।
1: कंबर वेझो आटोस के दुकान के बाहे लखे रुपये जो सामान सड़ी रख थी वो। भुट्टो चौक से कायम फिदाउस लाखों के दुकान के बाहे लगी वही। समूरो सामान खाक। दुकानदार जो चवण है त दुकान में पयल 12 लख रुपया रोक ए लखे रुपये जो सामान पिण सड़ी वो है। नोटिस वठी वहार कई वे।
2: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में ये जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का
3: नया लाइफ बॉय शैम्पू एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ बनाए बाल मजबूत और वो भी बेहतर कीमत में पूरे 50 रुपए की बचत के साथ। लाइफ बॉय शैम्पू कुदरती मजबूती का न्यू लुक।
4: स्किन केयर के लिए दुनिया भर में खवातीन का अव्वलीन इंतखाब फाइजा ब्यूटी क्रीम। इसमें शामिल अज्जा आपकी स्किन को रखे हेल्थी खूबसूरत और जवान। फाइजा ब्यूटी क्रीम।
5: अहमद बेटा चलो उठ जाओ।
6: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
7: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
8: Yeah!

आपको देखता हूँ माशाल्लाह, आपको देखता हूँ दिल खुश होता है, पीछे देखता हूँ फिर बड़ा नर्वस हो जाता हूँ। अब आपसे गुजारिश है, जो खामोश बैठा हो उससे पूछ लें कि मौला अली का नारा लग रहा है तेनू खैर ते है, क्यों खामोश बैठा है? थोड़ा जा ऊंचा बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, सलामत रहें मिलकर। हाँ।

इलाके वालों को पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बाबाज़े बुलंद, मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बाबाज़े बुलंद हैदर।

आशिक बैठे हैं तो अभी उतनी आवाज नहीं आई। महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो जानता किधर है, सारे ही महफिल वाले। हाँ, ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाए, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समाज फरमाए बाबाद बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान। मौलाली के नारे का जवाब देना है बाबाद बुलंद। है कोई आए जब सारा सफर दबेड़ा।

0: बस खत्म। जो बाहर खड़े हैं वो भी बोल दे
1: हो नारे हैदरी।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: आवाज। खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: आप सुन रहे हैं TFM88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हजारे मानू शरीक थिया। ईरान जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुजतबा खमनाई शहीद आयतुल्ला खमनाई जी ताजियती मिड़ाके में शिरकत कदो। ताजियती मिड़ाको मगरब ऐशा जो नमाज बाद थींदो।
2: जीकबे ते हमलन बाद पाकिस्तान समेत बेन साल्स मुल्कन सब सफारती कोशिशों ते के न्यूज वेबसाइट एग्जेप्स मौजूद पाकिस्तान है कतर समेत साल्स मुल्क अमेरिका ईरान छिकतान घटाण एटमी प्रोग्राम ते गालन जी बहाली लाए कोशिशों कर रहा है। बिन्हीं मुल्कन जे नुमाइंदन अमेरिकी ए ईरानी इख्तियारन सां भी गालायो आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान सां मुकमिल जंग जो हामी न आहे।
1: अमरीका पारा ट्रेनियों पर ईरान से बमबारी। ईरानी शहर कोनाक चोगादक बोसर आ बंदर अब्बास से मिजाइल हमला। ईरान जब अमरीकन से जवाबी हमला जारी है। ईरानी मीडिया चवण है कतर बहरीन कुवैत में अमरीकन के निशानो बनाया वो।
2: ईरान सा टेक्निकल सतह जो गाल जारी है। मसले के सिफारती हल लाए पुरजम आयु अमेरिकी अमलदार दावा है। अमेरिकी परदेही मीडिया मौजूद तेहरान ए वाशिंगटन में टेक्निकल सतह जो गाल जारी है। अमेरिका जो मौकिफ वाजे है ईरान एटमी हथियार न रखो।
1: केपी जिला के कुहाट में पुलिस जो कानून लागू कर इदार ऑपरेशन चार दहशतगर्द मारी वा। पुलिस मूजिब गुजरात ला गड़ियल ऑपरेशन किया वो। ऑपरेशन के नतीजे में मारज दहशतगर्द केतर ही पुलिस ऑफिसर की शहादत में गुर्बल हुआ। वधिक जांच जारी है।
2: कंडियारो भरसा हथियारबंदन की फायरिंग में जख्मी थे व्यापारी नवाब शाह अस्पताल में दम धनी हवाले कर छो। मंगरिया शाख वट गोलियों लगन सबब जख्मी थे व्यापारी नसीर कलोड़ो हयाती विजाए वेठो। लखी गुलाम शाह वेझो सखर रोड ताण जातल शख्स जो लाश हथ अस्पताल मुंतकिल। पुलिस है त लाश आइस के मवाली जो लगी रो है। पीर गोठ भरसा बे नौजवान जो लाश हथ आयो है। पुलिस मौजूद फोती की सुणप अब्दुल रहमान कलोड़ के नाले सा थी आहे। संदस खीसे मां नशे वारियूं शयूं मिलियूं आहिनि।
1: कैपुर भरसा छेड़े में कतल थियल पंज ॼणनि जा लाश पुलिस वारसनि खे न ॾिना। सर्द खाने में पियल वोटिसाक नारेजो में मारिजी पियल फतेह मोहम्मद राजा नारेजो ऐं ॿिनि जी तदफीन न थी सघी। इंतज़ामिया बि औरतुनि समेत पंज ॼणनि जा लाश सिविल अस्पताल जे सर्द खाने में रखाए छॾिया। वारसनि मूजिबि पुलिस लाश ॾियण खां इनकारी आहे।
2: मेहड़ वेझो उमेर बाब चांडियो जे सोठ जे कतल बाद धुरिन में छिकताण। मुख़्तलिफ़ हंधनि ते पुलिस मुक़रर धुरियूं पंहिंजनि ॻोठनि ताईं महदूद। वधीक ॼणा गिरफ़्तार।
1: छियाणीअ में ज़री पाणी जी खोट सबब फसल सड़ण लॻा। बागरनि जी खोट ख़िलाफ़ हथ सां पाणी चोरी करनि पिया। पाणी चोरी जो नोटिस
2: खानपुर लग ठुल वासी टे ॼणा हथियारबंदन हथां यर्गमाल। फुरलुट मुतासिरनि जो इंडस हाईवे ते धरणो। मुतासिरनि हथे में टेस्ट ॾियण लाइ वञी रहिया हुआसीं त पुलिस वर्दी पहिरियल लोहारियुनि फुरलुट कई। फुर थियल सामान वापस करायो वञे। टंडे बागे में बेबदमनी बिरादरी जो बदीन रोड ते धरणो। अमन बहाल कराइण जो मुतालबो।

0: पाणी जी खोट ऐं प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाज नदो में जिस्म कारकुननि जो बदीन बदीन जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में जीएसएन बहाज कारकुन ज़िले में पाणी जी खोट ऐं प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाज नदो में जिस्म कारकुननि जो बदीन वञण खां रोकण ते धरणो बदीन पुलिस जिस्म अॻवान नवाज़ शाह वाडाई ऐं ॿियनि खे हिरासत में वठी छॾियो
1: सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में जमायत इस्लामी जी महांगाई ऐं पेट्रोल ते लेवी ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा लाड़काणो सांगर कंदकोट कश्मोर ऐं ॿियनि शहरनि में जमायत इस्लामी कारकुननि एहतजाज कयो मुज़ाहिरीन चयो त आलमी मार्केट में तेल सस्तो थियो आहे पोइ बि हुकूमत अवाम खे रिलीफ ॾियण लाइ तयार नाहे पेट्रोल वधीक सस्तो कयो वञे
0: लाड़काणे में वकीलनि जी कराची यूनिवर्सिटीअ में सिंधी शागिर्दनि ऐं तदरसी अमले खे तशद जो निशानो पाइण वारे वाक़िए ख़िलाफ़ रैली आमर अली सौ एडवोकेट रफ़ीक अहमद अबड़ो ॿियनि मीडिया खे ॿुधायो त हिकु सियासी जमायत 50 सालनि खां कराची यूनिवर्सिटीअ में सिंधी शागिर्दनि खे तंग करे रही आहे
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
4: yeah!

0: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।
1: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ जीए एफएम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफएम रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
2: जी हा, 2315525786।
1: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

गडियल अरब इमारतन के अमरीका से सहकार की कीमत अदा करनी पवी ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी की मेंबर इस्माइल कोसरी है यूएई पैं कदम से पान के ईरान के दुश्मन वाली फेहरिस्त में शामिल कर छो है यूएई के ईरान के दुश्मन से गड़ बीहण की गरी रकम गरी कीमत अदा करनी पवी।

0: गीली जल पर जम।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
5: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: झूमर
1: जी एफ एम 88 नेटवर्क
2: सिंध।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुशात जी।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
4: तपोए जिम 90.4 मातली बदीन।

0: अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
0: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252578 6।
0: जी हा, 2315525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

0: आवाज की डोर से बंधा हुआ
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत डी जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: जोला। अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: वेटिंग उम्मीदवार के मुस्तकबिल के फैसले बाबत कमेटी जो इजलास जूनियर साइंस टीचर लाइ 55% मार्क्स खड़ समूर उम्मीदवार के भर्ती करण जो फैसलो अर्ली चाइल्ड टीचर की भर्ती लाइ छोकर के अवलियत डेण जो फैसलो पीएसटी और जीएसटी बाबत अदालती फैसले से कानूनी मुशावरत कई वेंदी स्पीकर रवेश कादर शाह सदरत हेठ इजलास अपोजिशन लीडर अली कुर्शीदी और बिन मेंबर की शिरकत स्पीकर रवेश कादर शाह जूनियर साइंस टीचर लाइ 55% मार्क खड़ समूर उम्मीदवार के भर्ती करण जो फैसलो थियो आहे। अर्ली चाइल्ड टीचर जो टेस्ट पास कर 500 छोकर के 15 दिन अंदर ऑफर लेटर डिना वेंदा। जडे त जीएसटी पीएसटी ला अदालती फैसले बाबत कानून वारे खाते से मुशावरत कई वेंदी। सरदार शाह चो तालीम खातो रुगो रोजगार जो जरियो ना है। 55 का वधिक मार्क खड़ के साइंस टीचर भर्ती करण जो फैसलो कयो आहे। कमेटी पारा तालीम खाते के बुधण ते थोरत आहियां।
2: ईरान से टेक्निकल सतह जो गाल जारी आन मसले के सिफारती हल लाए पुरजम आयो। अमेरिकी अमलदार जे दावा अमेरिकी परदेही मीडिया मौजूद तेहरान ए वाशिंगटन में टेक्निकल सतह जो गाल जारी आन। अमेरिका जो मौकफ वाजे आ ईरान एटमी हथियार न रखंदो।

0: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
0: जी हा, 2131525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GA FM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत डीं जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वञे।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पीएसटी एंड जीएसटी वेटिंग रूम एनवायरमेंट जे मुस्तक़बिल जे फैसले बाबत कमेटी जो इजलास। जूनियर साइंस टीचर लाइ 55 सेकंड मार्क्स फ्रंदड़ समूरन उम्मीदवारनि खे भर्ती करण जो फैसलो। अर्ली जॉइंट टीचर जी भर्तियुनि लाइ छोकिरनि खे आवेदन ॾियण जो फैसलो। पीएसटी एंड जीएसटी बाबति अदालती फैसले ते कानूनी मुशावरत कई वेंदी। स्पीकर अवेस कादर शाह सदारत हेठि इजलास। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ऐं ॿिनि मेंबर जी शिरकत। स्पीकर अवेस कादर शाह चयो जूनियर साइंस टीचर लाइ 55 मार्कूं खणंदड़ समूरनि जे उमेदवारनि खे भर्ती करण जो फैसलो थियो आहे। अर्ली चाइल्ड टीचर जे टेस्ट पास कंदड़ 500 छोकिरनि खे 15 ॾींहनि अंदर ऑफर लेटर ॾिना वेंदा। जीएसटी ऐं पीएसटी लाइ अदालती फैसले बाबति कानूनी खाते सां मुशावरत कई वेंदी। सरदार शाह चयो त तालीम खातो रुगो रोज़गार जो ज़रियो नाहे। 55 खां वधीक मार्कूं खणंदड़नि खे साइंस टीचर भर्ती करण जो फैसलो कयो आहे। कामयाबी पारां तालीम खाते खे ॿुधण ते थोरायतो आहियां।
2: ईरान सां टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं जारी आहिनि। मसइले जे सिफारती हल लाइ पुरज़म आहियूं। अमेरिकी अमलदारनि जे दावा। अमेरिकी परडेही मीडिया मौजूदु तेहरान ऐं वाशिंगटन में टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं जारी आहिनि। अमेरिका जो मौक़िफ़ वाज़े आहे, ईरान एटमी हथियार न रखंदो।
1: अमरीका जे 3 ॾींहं वेरान ते बमबारी। ईरानी शहर कुनार चौगात बशर बदर अब्बास ते मिज़ाइल हमला। ईरान जा ॿ अमरीकी अॾनि ते जवाबी हमला। ईरानी मीडिया चवण आहे त कतर, बहरीन ऐं कुवैत में अमरीकेरनि खे निशानो बणायो वियो।
2: अमेरिका ऐं ईरान जे हिक ॿिए ते हमलनि बाद पाकिस्तान समेत ॿियनि साल्स मुल्कनि सिफारती कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं आहिनि। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एग्ज़िब्स मौजूदु पाकिस्तान ऐं कतर समेत साल्स मुल्क अमेरिका ईरान छिकताण घटाइण एटमी प्रोग्राम ते ॻाल्हियुनि जी बहालीअ लाइ कोशिशूं करे रहिया आहिनि। ॿिन्ही मुल्कनि जे नुमाइंदनि अमेरिकी ऐं ईरानी इख़्तियारियुनि सां बि ॻाल्हायो आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प बि ईरान सां मुकमिल जंग जो हामी न आहे।
1: वेढल रुपए मर्दनि खे अमरीका सां सहकार जी क़ीमत अदा करणी पवंदी। ईरानी पार्लियामेंट जे क़ौमी सलामती कमेटी जे मेंबर इस्माइल कोसरी चयो आहे त यूएई पंहिंजे कदमनि सां पाण खे ईरान जे दुश्मन वारी फ़हिरिस्त में शामिल करे छॾियो आहे। यूएई खे ईरान जे दुश्मन सां गॾु बीहण जी घणी क़ीमत अदा करणी पवंदी।
2: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां गिलगित बल्तिस्तान जे नून लीगी असेंबली मेंबर्स जी मुलाक़ात। वज़ीर आज़म जे लीगी मेंबर्स खे जीई बी जा मसला हल करण। शहबाज शरीफ चयो बल्तिस्तान जी अवाम सां गिलगित बल्तिस्तान जे शामिल आहे।
1: गैर क़ानूनी अदावतनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो अख़्तियार बुनियादी तौर ते सूबाई हुकूमत जो आहे, अदलिया जो न आहे। अदालत जो तकरार ताईं रहनि, गैर ज़रूरी मामलनि में मुदाख़लत न कनि। वफ़ाक़ी आइनी अदालत नसला टावर खे ढाहिण जो सबबु बणजंदड़ सुप्रीम कोर्ट जा हुकम वापसि वठी छॾिया। आइनी अदालत फैसले में चयो आहे त सुप्रीम कोर्ट दायरे खां अॻिते वधी वॾा हुकम जारी कया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जी रिपोर्ट ते क़ानूनी घुर्जूं पूरियूं करण बिना ढाहिण जा हुकम नथा ॾेई सघजनि। हर क़िस्म जी मुनसिफ़ानी कार्रवाई सभिनी जो हक़ आहे। अदालत जो मक़सदु रुगो क़ानून मूजिबि कार्रवाई यकीनी बणाइण आहे।
2: वज़ीर आला हाउस में चौमासे जे वसकारनि ऐं बोर्ड बाबति इजलास। वफ़ाक़ी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ऐं NDMA चेयरमैन जे इजलास में शिरकत। सिंध ऐं वफ़ाक में चौमासे जे वसकारनि ऐं बोर्ड खे मुंहुं ॾियण बाबति सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। NDMA ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त 15 जुलाई खां 30 अगस्त ताईं मामूल खां वधीक गर्मी ऐं बरसातनि जो इम्कान आहे। आपाशी वारे वज़ीर जाम खान शोरो चयो त सिंध हुकूमत चौमासे बाबति तयारियूं कयूं आहिनि।
1: वॾनि शहरनि में नाइट पार्टीज़ वारो कल्चर सबबु एड्स पकड़जी रही आहे। सिहत वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल जो इंकशाफ़। सिनेट कमेटी खे आगाही ॾींदे वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो त नाइट पार्टीज़ में ड्रग्स जे इस्तेमाल ऐं नौजवाननि जे जिंसी सरगर्मियुनि सबबु HIV पकड़जी रही आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।
2: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252576।
4: जी हाँ 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़। सिंध की
1: आवाज़। जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
3: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252578।
3: जी हाँ 2315525786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

जीएसटी वेटिंग उम्मीदवार के मुस्तकबिल के फैसले बाबत कमेटी जो इजलास जूनियर साइंस टीचर लाए 55 सैकड़ो मार्क्स कड़ा समूर उम्मीदवार के भर्ती करने का फैसलो अर्ली चाइल्ड टीचर्स की भर्ती लाए छोकरियों के वरीयत देने जो फैसलो पीएसटी और जीएसटी बाबत अदालती फैसले से कानूनी मुशावरत कई वे स्पीकर एस कादिर शाह की सदारत हेठ अपोजिशन लीडर अली खुर्शीद और बेन मेंबर्स की शिरकत स्पीकर अवेस कादिर शाह चाहिए जूनियर साइंस टीचर लाए 55 सैकड़ों मार्कू खड़ समूर उम्मीदवार के भर्ती करने फैसलो थोड़ा है।

टीचर टीचर जी डेस्क फास्ट अदर 500 छोकरियन के 15 डीहन अंदर ऑफर लेटर देना विदा जीएसटी ए पीएसटी लाए अदालती फैसले बाबत कानूनी बारे खाते सामुश औरत कई वेंदे सरदार शाह चयो त तालीम खातो रुगो रोजगार जो जरियो नाहे 55 खां वधीक मार्कू खणंदड़नि खे साइंस टीचर भर्ती करण जो फैसलो कयो आहे कमेटी पारां तालीम खाते खे ॿुधण ते थोरायतो आहियां।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। GAFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GAFM 90.4।
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।
5: करो छो।

अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
3: पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सबसे पहले जूनियर साइंस टीचर्स के लिए खुशखबरी ये है कि हम जूनियर साइंस टीचर जितने हमारे बच्चे पास हुए हैं हम इंशाल्लाह सबको अपॉइंट करें। जितने बच्चे हैं 8700 बच्चे इंशाल्लाह उन सबको जल्दी ऑफर ऑर्डर भी दिए जाएंगे, उन सबको अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन क्राइटेरिया वही रहे अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स। तो कमेटी ने ये डिसाइड किया है और एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये रिकमेंड किया है कि जितनी बच्चियां पास हुई हैं 500 के करीब, जो हमारी बच्चियां अभी पास हुई हैं, इनको विद इन 15 डेज ऑफर ऑर्डर दिए जाएं विद इन 15 डेज। और इसका जो इशू था, जो मेन इशू था, जेएसटी जेईएसटी और पीएसटी वाला, जिसके हवाले से ये कमेटी बनाई गई थी, उस पर बहुत डिस्कशन हुई। उस पर एक कोर्ट का केस आ गया है जिसकी वजह से कमेटी एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये रिक्वेस्ट की है कि आप इस कोर्ट के केस का ओपिनियन ले लें लॉ डिपार्टमेंट से। लॉ मेकर्स जो इस असेंबली में बैठे हैं, जो कानून बनाते हैं, उन पे ये फर्ज होता है कि जब कोर्ट का कोई डिसीजन आए तो उसको माने।
1: मैंने पहले दिन से ये बात करता आया हूँ कि भाई एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसको हमें तालीम का जरिया बनाना है, रोजगार देने का जरिया नहीं बनाना। तो कमेटी की और सबकी इत्तेफाक की राय से ये था कि अब फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हुए हैं उनको मौका दिया जाए, उनको ये ऑफर लेटर्स इशू किए जाएं और जितने 55 से ऊपर आए हैं पास होके उन सबको आप ले लें साइंस टीचर, क्योंकि साइंस टीचर की जरूरत है हमें। और फ्यूचर में अगर तालीम को ठीक करना है तो ये मसाइल आज हम नहीं होंगे, कल उठ के सामने जब खड़े आएंगे तो लोग पूछेंगे हमसे सवाल कि आपने उस वक्त ये फैसला क्यों।
2: सिंधु स्वतंत्री भर्ती बाबत जोड़ियल पार्लियामानी कमेटी जूनियर स्कूल टीचर्स लाइ 55 सैकड़ों मार्क्स खड़ंदड़ समूर उम्मीदवार के भर्ती करण जो फैसलो करे वरतो। अर्ली चाइल्ड टीचर्स की भर्ती में छोकरियों के अबूलियत देने जो फैसलो पीएसटी ए जीएसटी जी वेटिंग उम्मीदवार ने जे मुस्तकबिल बाबत को फैसलो न थी सको। स्पीकर रमेश कादिर शाह की सदारत हेठ इजलास में अपोजिशन लीडर अली कुशीदी ए बेन मेंबर की शिरकत। स्पीकर रमेश कादिर शाह चाहता है जूनियर साइंस टीचर लाइ 55 सैकड़ों मार्कू खड़ंदड़ समूर उम्मीदवार के भर्ती कर वो। अर्ली चाइल्ड टीचर की टेस्ट पास कदड़ 500 छोकरियों के 15 दिन अंदर ऑफर लेटर दिना वा। जेईएसटी ए पीएसटी उम्मीदवार लाइ अदालती फैसलो अची वो है, इन बाबत कानून वाले खाते से मुशावरत कई वी तो उन्होंने तो कर सके। सरदार शाह चो तालीम खाते के रोजगार न पर तालीम जो जरियो बढ़ाणो पव। कमेटी फैसलो किया है जीएसटी ए ईएसटी में फ्रेश ग्रेजुएशन के मौको दिनों वे।
3: सिंध के शऊर के बेवकूफ़ बढ़ाए पे मुसलसल असा बेवकूफ़ बढ़ाए पे वे असा के बस तारीख के तारीख दिनी वे थी
4: रोड के ना मन सीपी के ना मन तो रोड के वेठा अं छा कर सकूं
5: बिन दिन के अंदर असा ना तो इंशाला फिलहाल
2: पार्लियामानी कमेटी असा लाय कई इन में असो जिक्र ही नाची प्रेस क्लब बहरा धरणो हणी वेठल पीएसटी ए जीएसटी की वेटिंग उम्मीदवार जो सख्त एहतजाज। केतरी ही नारियों केटीएन न्यूज से गाल बोल दौरान लुड़क लाड़े वेठियो बिन दिन का बिलावल हाउस आरो धरणे जो चिताव। पीएसटी ए जीएसटी जे वेटिंग उम्मीदवार जो चवण है त कमेटी में वड़ी उम्मीद हुई पर सपनी असा के मायूस करो रुगो रटा है तारीख मथा तारीख टिली पी वे हाँ अस आबघात क्यों। बलोचिस्तान इलाके खुजात में थाने ते नाकाम हमले का पोए सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन में 13 दहशतगर्द जनम भेड़ा। ऑपरेशन शबान दौरान मारजी वियल खारजी दहशतगर्दन जो अंग 5 तक थी। सिक्योरिटी जरिए मौजूद 5 जुलाई का पोए शुरू कल ऑपरेशन शबान ए कार्रवाई दौरान मारजी वियल दहशतगर्दन जो मजमू अंग 75 है। दहशतगर्दन खिलाफ जमीनी ए फजाई कार्रवाई जारी है।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM
2: 90.4 पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
3: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252586
3: जी हां 2315525786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03125257 86
3: जी हा 2315525786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़

अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: White H Beauty Cream 5-day beauty plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क
0: होली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, माथली और माथली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सबसे पहले जूनियर साइंस टीचर के लिए खुशखबरी ये है कि हम जूनियर साइंस टीचर जितने हमारे बच्चे पास हुए हैं हम इंशाल्लाह सबको अपॉइंट करेंगे। जितने बच्चे हैं 8700 बच्चे इंशाल्लाह उन सबको जल्दी ऑफर ऑर्डर भी दिए जाएंगे, उन सबको अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन क्राइटेरिया वही रहे अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स। तो कमेटी ने ये डिसाइड किया है और एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये रिकमेंड किया है कि जितनी बच्चियां पास हुई हैं 500 के करीब जो हमारी बच्चियां अभी पास हुई हैं इनको विद इन 15 डेज ऑफर ऑर्डर दिए जाए विद इन 15 डेज। और तीसरा जो इशू था, जो मेन इशू था, जेएसटी जेईएसटी और पीएसटी वाला जिसके हवाले से ये कमेटी बनाई गई थी उस पर बहुत डिस्कशन हुई। उस पर एक कोर्ट का केस आ गया है जिसको ये रिक्वेस्ट की है कि आप इस कोर्ट के केस का ओपिनियन ले लें लॉ डिपार्टमेंट, क्योंकि लॉ मेकर्स जो इस असेंबली में बैठते हैं जो कानून बनाते हैं उन पे ये फर्ज होता है कि जब कोर्ट का कोई डिसीजन आए तो उसको माने।
1: मैंने पहले दिन से ये बात करता आया हूँ कि भाई एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसको हमें पहले बनाना है, रोजगार देने का जरिया नहीं बनाना। तो कमेटी की और सबकी इत्तेफाक की राय से ये था कि अब फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हुए हैं उनको मौका दिया जाए, उनको ये ऑफर लेटर्स इशू किए जाएं और जितने 55 से ऊपर आए हैं पास होके उन सबको आप ले लें साइंस टीचर, क्योंकि साइंस टीचर की जरूरत है हमें। और फ्यूचर में अगर तालीम को ठीक करना है तो ये मसाइल आज हम नहीं होंगे, कल उठ के सामने जब खड़े आएंगे तो लोग पूछेंगे हमसे सवाल कि आपने उस वक्त ये फैसला क्यों।
2: सिंध में उस्तादनि जी भर्तियुनि बाबति जोड़ियल पार्लियामानी कमेटी जो जूनियर स्कूल टीचर्स लाइ 55% मार्क्स खणंदड़ समूरनि उमीदवारनि खे भर्ती करण जो ऐलान। अर्ली चाइल्ड टीचर्स जी भर्तियुनि में छोकिरियुनि खे अवलियत ॾियण जो फैसलो। पीएसटी ऐं जे

0: टेस्ट पास कंदड़ 500 छोकरियुनि खे 15 ॾींहनि अंदरि ऑफर लेटर ॾिना वेंदा। जीएसटी ऐं पीएसटी उमेदवारनि लाइ अदालती फ़ैसिलो अची वियो आहे। हुन बाबति कानून वारे खाते सां मुशावरत कई वेंदी त हुननि लाइ छा थो करे सघिजे। सरदार शाह चयो त तालीम खाते खे रोज़गार न पर तालीम जो ज़रियो बणाइणो पवंदो। कमेटी फ़ैसिलो कयो आहे त जीएसटी ऐं पीएसटी में फ्रेश ग्रेजुएट्स खे मौको ॾिनो वञे।
1: सिंध जे शऊर खे बेवकूफ़ बणायो वञे पियो, मुसलसल असांखे बेवकूफ़ बणायो पियो वञे। असांखे बसि तारीख़ ते तारीख़ ॾिनी वञे थी।
2: घोड़नि खे नथा मञनि, सीपी खे नथा मञनि त रोड ते वेठा आहिनि। अञा छा था करे सघूं हुन खां पोइ असां
3: करे ॿिनि ॾींहनि जे अंदरि असांखे नयो इनशा फिलहाल हाउस जे ॿाहिरां जेको असां पूरो अमन धरणो ॾेई वेही रहंदासीं।
0: पार्लियामानी कमेटीअ सां लाइ ठही ऐं हुन में असांजो ज़िक्र ई न थियो। कराची प्रेस क्लब ॿाहिरां धरणो हणी वेठल पीएसटी ऐं जीएसटी जे वेटिंग उमेदवारनि जो सख़्त एहतजाज। केतिरियूं नारियूं केतिरियुनि न्यूज़ सां ॻाल्हि ॿोल दौरान लुड़क लाड़े वेठियूं। ॿिनि ॾींहनि खां पोइ फिलावल हाउस आॾो धरणे जो चिताब। पीएसटी ऐं जीएसटी जे वेटिंग उमेदवारनि जो चवण हो त कमेटी मां वॾियूं उमेदूं हुयूं पर सभिनी असांखे मायूस कयो। रुगो ॾटा ऐं तारीख़ मथां तारीख़ ॾिनी पई वञे। छा हाणे असां आपघात कयूं?
4: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ जीए एफएम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफएम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 2315525786।
0: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सुना हर चप्पा हर गोशा,
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते। हाँ, अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

असांजो क़ाबिलियत निहायत मोहबती माण्हू साईं निसार खोड़ो साहिब जे पुरवकार तकरीब में मौजूदु आहियूं। मां पंहिंजे दिलि जे गहराइयुनि सां खेनि भलीकार चवां थो। हज़रियाना नगारी साहिबा

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।